89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, ये संस्करण शुद्ध, स्पष्ट और अधिक प्रभावशाली है। यहाँ शुद्ध और सुधारित हिंदी संस्करण दिया गया है। आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ शुद्ध और सुधारित हिंदी संस्करण दिया गया है। आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,

0: आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट। आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे थोड़ी ही देर में आपके मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेल्लो फरमाइश का।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
4: हेलो, हेलो, नमस्ते सर।
5: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
4: नाम सर चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
5: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
4: और सर बरसात वगैरह हुई क्या?
5: हाँ, बरसात गंगापुर में परसों के दिन हुई है सर, बढ़िया ठंडा मौसम है। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: गाना तो सुपर हिट लाए हैं सर।
5: बताएं।
4: जिसे दिल का दुश्मन समझते।
5: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के, बेहतरीन सर सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है। 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला लें और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, नाम बताएं।
7: सर मेरा नाम पायल जग है।
6: पायल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
7: सर मैं गंगापुर सिटी से बात कर रही हूँ।
6: पायल जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
7: पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा भजन रेडियो DS में कूल किया। धन्यवाद।

0: पता नहीं।
1: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से।
1: क्या तुम्हें पता है ए गुलशन,
2: मेरा महबूब आने वाला है। क्या बात है।
1: हाँ, हाँ, सुना
2: रहे हैं बिल्कुल आपका, आपकी प्रवाह।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: अंजना शर्मा।
0: अंजना जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर गंगापुर सिटी से।
0: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सर गाने के बोले मस्कारा, न्यू सॉन्ग है सर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सा गाना रेडियो डेज में कॉल किया, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2020।

0: पाँच। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
3: हेलो
4: हेलो, गुड मॉर्निंग, सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रही हूँ सर।
3: जी गुड मॉर्निंग मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
4: धड़कन ये सांसें जवानी ये जिंदगानी आपकी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करें।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
6: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है।
7: हेलो, जी मैम बताओ। सर
8: सर बिलोर सोलर वाला बोल रहा हूँ, हजरत कॉलोनी से।
7: जी विनोद जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो DS से?
8: वो तुम्हें दिल से चाहता मगर तुम हुए ना हमारे।
7: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, ये बेहतरीन सा सॉन्ग आपको रेडियो DS से।

0: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
1: हेलो
2: जी, नाम बताए सर।
1: मैं पीजी देशमुख बोल रहा हूँ सर।
2: पीजी देशमुख जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: उंचेरवा बुजुर्ग, तालुका हदगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।
2: महाराष्ट्र से बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आज? फिल्म का नाम है अनाड़ी
2: जी।
1: क्या मौसम आया है?
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएसपी को लिखे। धन्यवाद।

0: हेलो सर
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सौरभ मीना सर।
1: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर मैं गंगा पुष्टि से बात कर रहा हूँ।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर मुझे सुनना है डांडा न्योड़ी वाला का मियां कारा सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश पे सॉन्ग।
2: क्या आप चाहते हैं कि हर बीट में है शहर का कमाल? DS 89.6 शहर की धुन।

0: संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आप
1: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: दोस्तों 11:02 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री से 33 डिग्री भी हो चुका है। और दोस्तों अभी फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। हेलो फरमाइश। दोस्तों बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सर मीनाक्षी मीना।
1: मीनाक्षी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: सर गंगापुर सिटी।
1: बताएं मीनाक्षी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
0: शीशा।
1: ठीक है सर, बिल्कुल सुना रहे हैं हम आपका, आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस से सुन के बना।

0: तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं। मैं तो देख देख शीशा शर्मंदे फिरो।
1: हेलो जी, नाम बताएं सर।
2: जी भजी जी नमस्कार जी, पुष्कर शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से।
1: पुष्कर नाथ शर्मा जी जम्मू कश्मीर से, नमस्कार, कैसे हैं सर आप?
2: नमस्कार नमस्कार भैया जी, ठीक ठाक है। आपकी दुआएं, आप जैसे भाइयों की दुआएं, और आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो, तो आपका कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका लाड प्यार है। कैसा मौसम है जम्मू कश्मीर में फिलहाल?
2: थोड़े थोड़े बादल है, रिमझिम थोड़ी थोड़ी फुहारे बारिश की हो रही है, बाकी ठीक है मौसम।
1: क्या बात है, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
2: जैसे कि आज हमारे जैसे कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत देश से हमारे ये जो अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है
1: जी,
2: तो उसी उपलक्ष्य में गाना सुनूंगा आपकी कसम फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है शायद गाना, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के बेहतरीन सत्संग रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, नाम बताएं।
6: कृष्णा मीना।
5: कृष्णा मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
6: गंगापुर सिटी।
5: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो DS से?
6: ओड़नी ओड़ के नाचू।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: हेलो।
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: सर मेरा नाम विक्रम है।
3: कहाँ से बोल रहे हैं वीणा जी?
4: हम रिको एरिया से बोल रहे हैं।
3: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: एक कटोरा जल के भीतर, एक कटोरा जल के बाहर।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: ये नहीं निकलता 10-12 साल।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं। ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। डीएस एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बताएं।
0: कशिश।
1: कशिश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: लाइव भी ना गई।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: रफीक खान बोल रहा हूँ, लोगों मस्जिद के पीछे से।
1: रफीक जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जीना सिर्फ मेरे लिए।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में हेलो सिटी का
3: हेलो
4: जी, नाम बताए सर।
3: मेरा नाम आयुष शर्मा।
4: आयुष जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: नसिया कॉलोनी।
4: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: जी टाउन।
4: जी टाउन सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो DS में कुल के। धन्यवाद।
3: ओके।

0: नाम MUSIC 3111 सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: यशपाल गुजर।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: यारा ने।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: जो टाइम प्यार का था प्यारा, वो कद का बावली बीत लिया। बस तुम आ रही मैंने जिंदगी में, बाकी
1: हेलो
0: जग सारा
2: जी। हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: जग सारा माया शर्मा।
1: माया जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सिंगापुर से।
1: बताएं माया जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: सारा रोला पतली कमर का।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: गंगाधर सावनकर।
2: गंगाधर सावनकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: सर बोले गाना देखो, सफर का सुनने का है।
2: अच्छा, सफर का सुनना है, बताएं सर कौन सा है?
3: मुकेश का है, जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: हेलो जी, नाम बताएं?
3: नतीजा।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
1: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं।
4: भानु प्रताप सिंह डोई।
5: भानु प्रताप सिंह डोई जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: करौली से।
5: करौली से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: जाट गया यार।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं। ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: कोमल।
2: कोमल जी, कहां से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: इश्क में तो हर चीज लुट जाती है।
2: बिल्कुल सुना रहे मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जाती है। एक बार एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के साथ साथ कुत्ता भी चल रहा था। कुत्ता आगे आगे भागे, बैलगाड़ी पीछे पीछे भागे चले। अब बैलगाड़ी तो धीरे चलेगी, बैल तो आराम से चलेगा, पूरा सबको लेके चल रहा, कुत्ते की स्पीड तेज है, वो अकेले चल रहा है। तो कुत्ता जो है आगे आगे चले तो उसको लगे देखो मैं आगे चल रहा हूँ इसलिए बैलगाड़ी आ रही है पीछे। धीरे धीरे उसको ये भ्रम होने लग गया, लेकिन कुत्ता भी आगे भाग भाग के थक गया। के नीचे घुस जाता हूं और नीचे से आकर के दुबक गए बैलगाड़ी के। अब बैलगाड़ी चले वो भी साथ में धीरे धीरे चले, बैल भी चल रहा है साथ में, गाड़ी भी चल रही है वो भी धीरे धीरे चल रहा है। अब गर्मी भी नहीं लग रही, धूप भी नहीं लग रही, अच्छा स्पीड मैच कर गई। बैल के पैरों पे आराम आराम से वही स्पीड मैच करते करते वो भी आराम से चल रहा, बैल भी आराम से चल रहा। अब धीरे धीरे देखा कि कितना बढ़िया स्पीड मैच कर रहा है, मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ बैलगाड़ी भी वैसे वैसे चल रही है। धीरे धीरे उसको ये भ्रम होने लग गया कि बैलगाड़ी मैं ही तो चला रहा हूँ। अच्छा उसको जब ये थोड़ी देर में उसको एकदम कंफर्म जब हो गया कि पूरा का पूरा टेम्परामेंट मैच हुआ पड़ा है, मेरी स्पीड पे बैलगाड़ी चलती जा रही है, तो उसको लगा अगर मैं चला सकता हूं तो मोड़ भी सकता हूं। तो मोड़ने के चक्कर में सोचा अब ये कट ठीक लग रहा है, यहां दाई मोड़ देता हूं। अब वो दाई की तरफ घूमा तो बैलगाड़ी के पिछले टायर के नीचे आया और गेम ओवर हो गया। इसको बोलते हैं अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमति मन्यते, ये मान लेना कि मैं ही कर रहा हूं। एक बार एक बैलगाड़ी जा रही थी।
1: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी।

0: 69.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं?
1: भानु प्रताप सिंह डोई।
2: भानु प्रताप सिंह डोई जी, कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: करौली से।
2: करौली से? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जाट गया यार।
2: हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर?
3: मेरा नाम सर प्रिंस मीणा है।
2: प्रिंस जी, कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं सर गंगापुर सिटी से प्रज्ञा होस्टल से बात कर रहा हूं।
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: मैं मासूम दादा का मैडम जी सॉन्ग है ना
2: जी, सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: प्रिया।
0: प्रिया जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जयपुर।
0: जयपुर से बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? ट्रेडिंग दिए थे
1: कजरों से करके प्यार।
0: आपकी फरमाइश कैसे हूँ रेडियो डीएस में कुल किया धन्यवाद। हेलो,
2: जो मनोरंजन का सरताज है
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: डीएस का

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों दोपहर का एक बजने वाला है, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मनपसंद अगला कार्यक्रम नए तरानी। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ईशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS।
5: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री के साथ साथ आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजी ऋषि के साथ कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों 1:03 का समय हो चुका है और आज ये पहला कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं राजस्थानी ट्रैक पर और करते हैं कुछ खट्टी मीठी चटपटी महिलाओं से संबंधित जानकारियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं DS 89.
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम ऑनलाइन ब्लैकमेल से बचाव। मैं वैशाली निर्वाण गांव बरनाला से आपके साथ जुड़ी हुई हूं और मेरा विषय है ऑनलाइन ब्लैकमेल से बचाव। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, जैसे साइबर ब्लैकमेलिंग जिसे कहा जाता है, एक गंभीर समस्या बन गई है। ब्लैकमेलर अक्सर सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, व्हाट्सएप या अन्य कोई प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करके लोगों को निजी तस्वीरें, वीडियो, चैट या अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल करते हैं और फिर पैसे और ज्यादा निजी सामग्री या अन्य फायदे के लिए भी धमकी देते हैं। यह समस्या किसी को भी हो सकती है, लड़कियां, लड़के, महिलाएं, पुरुष, बच्चे या बुजुर्ग। भारत में हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। अगर आप 20 मिनट समय निकालकर यह लेख पूरा पढ़ें अगर आप 20 मिनट समय निकालकर यह वार्तालाप पूरी सुने तो ना आप सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी इस खतरे से बचा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे कि ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कैसे होती है। ब्लैकमेलर आम तौर पर ये तरीके अपनाते हैं, जैसे फेक प्रोफाइल बनाना, सेक्स टॉर्शन करना, हैकिंग करना, फेक न्यूज या रिवर। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कैसे होती है, तो ब्लैकमेलर आम तौर पर ये तरीके अपनाते हैं, जैसे फेक प्रोफाइल बनाना, सुंदर लड़की या लड़के का फेक अकाउंट बनाकर उनसे दोस्ती करते हैं, सेक्स टॉर्शन, बातचीत करते हैं और अश्लील दिशा में उस बातचीत को ले जाते हैं, अकाउंट हैक करके पुरानी चैट या फोटोज निकालते हैं, मैलवेयर वाला लिंक भेजकर डिवाइस कंट्रोल कर लेते हैं। अगर इन सभी चीजों से आप बचना चाहते हैं तो इस बचाव के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिन्हें हम प्रिवेंशन टिप्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है सावधानी पूर्वक दोस्ती करें। अनजान लोगों से जल्दी पर्सनल बातें ना करें। डेटिंग एप्स पर फोटो वीडियो शेयर करने से पहले 10 बार सोचें। वीडियो कॉल पर चेहरा दिखाने से पहले वेरीफाई करें कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके जान पहचान के हैं या नहीं। प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि पर अकाउंट को प्राइवेट रखें। सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को फोटो या स्टोरी देखने दें। लोकेशन शेयरिंग बंद रखें। इससे आपकी निजी जानकारी, आप कहां पर प्रस्तुत हैं, आप इस समय कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपके लोगों के अलावा दूसरों तक ये जानकारी नहीं जा पाएगी। आप इससे और बचाव कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे हम कहते हैं। ये एक तरीके की सुविधा है जहां हर अकाउंट का अलग अलग मजबूत पासवर्ड बनाया जाता है। गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी ऐप से 2FA जरूर ऑन करें। पासवर्ड मैनेजर जैसे बिटवार्डन इस्तेमाल करें। अपनी निजी सामग्री कभी शेयर ना करें। अंतरंग फोटो वीडियो किसी को भी ना भेजें, भले ही कितना भरोसा हो। याद रखें, एक बार शेयर हुई चीज आपका कंट्रोल छोड़ देती है। संदिग्ध लिंक्स और अटैचमेंट ना खोलें। आपकी फोटो वायरल हो रही है, जैसे मैसेज वाली लिंक्स को कभी ना खोलें। फाइलें डाउनलोड करने से पहले स्कैन करें। कोई भी अनजान मैसेज जो आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और आपके स्नैप पे आता है और जहां आपको किसी भी प्रकार की धमकी दी जाती है, जैसे कि यहां आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, आप इसे लिंक को खोलकर अपनी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं, तो वैसा ना करें। उन लिंक्स को खोलने से पहले बहुत बार सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग की आदत डालें। हर संदिग्ध चैट का स्क्रीनशॉट लें, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करें अगर कानूनी रूप से अनुमति हो। फेक अकाउंट की पहचान। न्यू प्रोफाइल, कम फॉलोअर्स और कम फोटोज, ये खतरे के संकेत हैं। कोई भी ऐसी आईडी जो आपको रिक्वेस्ट भेजती है, मैसेज करती है, जिसपे फॉलोअर्स बहुत कम है या जो अभी अभी न्यू अकाउंट में आके इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, उन पे भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दें।

आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। डीएस एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

दोस्तों 1:18 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्ले।
1: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। डीएस एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: सभी डीएस प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूबी सोनी फ्रॉम गंगापुर सिटी आज आपसे तलाक के बाद महिलाओं को मिलने वाले कानूनी अधिकार इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तलाक के बाद महिला की पहली आवश्यकता मेंटेनेंस की होती है, उसकी जरूरतों की होती है कि उसको मेंटेनेंस कैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा। तलाक के दौरान और बाद में महिला अपने पति से गुजारा भत्ता दो तरीके से ले सकती है, या तो वो चाहे तो अपनी पूरी राशि एक मुश्त ले सकती है या फिर मंथली ले सकती है, उसको दोनों तरह से हक पाने का अधिकार है। दूसरी बात कि ये राशि कितनी मिलनी चाहिए, तो ये राशि उसको जितनी पति की आय है उसके आधार पर अदालत तय करती है कि उसको मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। तीसरी बात आती है कि महिला अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, उसको पति से मेंटेनेंस पाने का, अगर वो वर्किंग वुमेन है तब भी अधिकार प्राप्त है और नहीं है तब भी अधिकार प्राप्त है, वो अदालत से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरी बात आती है हमारी बच्चों की कस्टडी की, कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तलाक के बाद जो महिला, अगर महिला का बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो ऑब्वियसली अपनी माँ के पास रहेगा, और उससे बड़ा है तो कस्टडी माँ को भी मिल सकती है और पिता को भी मिल सकती है। यदि कस्टडी पिता को मिलती है तो माँ को उसको मिलने का पूरा पूरा अधिकार है, माँ जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकती है। तीसरी बात आती है स्त्री धन की, कि शादी में महिला को मिले उपहार जेवर जो कुछ भी मिला है उस पर केवल उसी महिला का अधिकार है, ना उसके ससुराल वाले ना उसके पति उसके धन पर कोई दावा कर सकते हैं, उस पर केवल और केवल उसी का पूर्ण रूप से अधिकार रहता है। अगली बात आती है साझा घर में रहने का अधिकार, मतलब जो महिला है तलाकशुदा महिला है, जब तक उसको तलाक नहीं मिल जाता वो पूरी तरीके से उस घर में ससुराल में रहने की पूरी तरह हकदार है, उसे किसी भी तरह से उसका पति या उसके ससुराल वाले उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगली बात आती है पैतृक संपत्ति की, अगर तलाकशुदा महिला अपने माता पिता के साथ रहती है तो उसको अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार रहता है। अगली बात आती है कि अगर किसी महिला के पास वकील करने के लिए या फिर तलाक का फैसला कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको सरकार की तरफ से मुफ्त बिल्कुल कानूनी सहायता दी जाएगी और वकील भी उसके लिए मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा वकील चुने कि जो उसकी पारिवारिक वकील में मदद कर सके, मतलब जो उसका थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए, ऐसे वकील का सहारा ले तो बहुत बेटर रहेगा। धन्यवाद।

0: दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुना अभी जो कार्यक्रम नई तरह ने थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
3: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें सावधान रहें नमस्कार दोस्तों आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं OTP पूछना फर्जी बैंक कॉल KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना QR कोड स्कैन करवाना लॉटरी और इनाम का लालच देना फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झान से सोशल मीडिया हैकिंग व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं याद रखें अपना OTP, ATM पिन बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं अनजान लिंक पर क्लिक ना करें कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें जागरूक बने सुरक्षित रहें जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
4: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी दिल से दिल तक
5: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें DS एक विश्वसनीय नाम है कृपया अपना विश्वास बनाए रखें आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
2: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
4: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं। ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। डीएस एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम में थोड़ी ही देर में राजस्थानी गीत। दोस्तों, फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री के साथ साथ आप आनंद ले रहे थे बैक टू बैक गानों का। दोस्तों, चलते हैं और राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम का आरंभ करते हैं आज विशेष गायक कलाकार लखन भारती के इन राजस्थानी गीत भजन टाइप से।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
5: देव सीरीज द्वारा पेश करूं आप लोगों के सामने

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों 4:30 का समय हो चुका है। अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। थोड़ी ही देर में हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: मेरा योगेश।
0: योगेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: कॉलेज वाली छोरी।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी समय का एक गाना।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6, शहर की धुन।

0: हूँ।
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: फिल्म का नाम है वारंट और गाने की बोल है रुक जा रुक रुक रुक जाना वो जाना ना, हमसे दो बातें करके चली जाना।
0: रुक रुक जाना वो जाना, हमसे दो बातें
1: रुक जाना वो जाना हमसे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।
1: धन्यवाद।
2: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगा, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.9 FM।

0: हेलो
1: आर्यन महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नाम बताएं आपका।
1: ऋषि जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। सर आप कैसे हैं?
0: सर हम बढ़िया हैं। शारदा प्रसाद जी आप कैसे हैं, आप बताएं सर।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। रेडियो सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और मैं रेडियो सुनते हुए मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आप संगीत प्रेमी हैं और इतनी दूर से हमारे छोटे से शहर गंगापुर सिटी में कॉल करते हैं, अच्छा लगता है। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: छोटा सा हो या बड़ा सा हो शहर, लेकिन आपके यहाँ की जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन, गजब की है। स्टीरियो साउंड में हमारे कार्यक्रम सुनाई देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है राजस्थानी लोकगीत और फिल्म संगीत जो आप सुनाते हैं।
0: बिल्कुल सर, हम कोशिश लगातार यही करते रहते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम और बेहतरीन साउंड आप तक पहुंचाएं।
1: जी, आज हमारे मथुरा वृंदावन में टिप टिप बारिश हुई है, तो एक गाना है फिल्म मोहरा से, टिप टिप बरसा पानी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।
0: बिल्कुल सुना रहा हूं सर, ये बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी नाम बताएं सर।
1: सलाम बाबू खान।
0: बाबू खान जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: महबूब मेरे महबूब।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
4: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS 89.6
6: सर। हाँ जी, नाम बताएं आपका।
7: मुसेफ खान।
6: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
7: हम उदय वॉल से बात कर रहे हैं।
6: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
7: सितारे सॉन्ग।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है।
8: पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: मुझ पे तेरी नजर है।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हेलो
4: जी, नाम बताए सर।
3: नमस्कार सर, राजू लवानिया बोल रहा हूँ सर, आगरा उत्तर प्रदेश से।
4: राजू लवानिया जी कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक है सर, हम जाना चाहेंगे आप कैसे हैं?
4: हम बहुत अच्छे हैं सर, आपका आशीर्वाद है। कैसा मौसम है अभी गंगापुर में?
3: जी मौसम कुल मिला के सुहाना है, बारिश तो नहीं है लेकिन हल्के हल्के बादल हैं और मंद मंद हवाएं चल रही हैं। मॉनसून का आगमन तो हो चुका है लेकिन बारिश अभी नहीं है, हल्की फुल्की आज दोपहर में लगी थी लेकिन अभी तो मौसम ठीक ठाक है, मिला जुला मौसम है सर।
4: बिल्कुल राजू लगानिया जी, गंगापुर सिटी में भी 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है। और बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे ऐसे मौसम का आनंद लेने के लिए?
3: आज सर आप हमें अपनी तरफ का एक गीत है, फिल्मी का गाना है, चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले।
4: क्या बात है सर, सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
2: मीनाक्षी।
3: मीनाक्षी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
3: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हरियाणवी सॉन्ग है, ऊंचा नीचा रास्ता।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश का इस वक्त।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ स्वागत है आपका आपकी फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में। आज हम सफरनामे में बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेमिसाल जोड़ी के बारे में। 70 और 80 के दशक में एलपी का सामान्य अर्थ लिया जाता था लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, और इसके अलावा एक और अर्थ हुआ करता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसका एक सीधा मतलब यह भी था उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में एलपी ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के एक लोकप्रिय युग का सृजन किया था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। लक्ष्मीकांत जी का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत जी का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत जी ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वाद्य यंत्र मंडोलिया बजाने की शिक्षा बाल मुकुंद इंदौरकर से ली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, चलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारस मणि ने उनकी तकदीर बदल कर रख दी थी और फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर के धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। प्यारे लाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद

0: ट्रम्पेट बजाते थे और वो चाहते थे कि प्यारे लाल वॉयलिन सीखें। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था और साथ में प्यारे लाल जी को भी ले जाया करते थे। प्यारे लाल जी का मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता जी के घर ले गए। लता जी प्यारे लाल के वॉयलिन वादन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्यारे लाल को 500 रुपए इनाम में दिए, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटे वॉयलिन का रियाज करते, अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो में ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिली, जहां उन्हें 85 रुपए मासिक वेतन मिला। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा था। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वीं ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपए की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें वो छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेशी यात्रा करना उनका सपना था। आज सफरनामे में इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: 89.6 पे रेडियो DS।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ एक कहानी उस लेजेंडरी एक्टर की जिसने है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं। इस गीत को अपने अभिनय के दम पर एक सदाबहार हिट सॉन्ग बना दिया जिसने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया बल्कि एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में कई सारे नए कलाकारों को एक उड़ान दी जिसे पूरी दुनिया मनोज कुमार के नाम से जानती है। जी हाँ, आज सफरनामे में हम बात करने जा रहे हैं मनोज कुमार साहब के बारे में 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मनोज कुमार की पैदाइश 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुई थी। विभाजन के समय का परिवार दिल्ली के शरणार्थी कैंप में आकर रहा। कुछ दिनों बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में जाके वो बस गए। उनके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। फिल्मी जगत में कदम रखने के साथ ही उनके नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मनोज कुमार, उसके बाद भारत फिल्म से हासिल स्टारडम से इन्हें भारत कुमार नाम से भी जाना जाने लगा। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। मनोज कुमार साहब के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की 1962 में प्रदर्शित क्लासिकल फिल्म हरियाली और रास्ता में चमका। फिल्म में उनके अपोजिट माला सिन्हा थी। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 1964 में उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई थी, वह कौन थी। 1965 में ही मनोज कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म गुमनाम भी आई। इस फिल्म में रहस्य रोमांस के ताने बाने, मधुर गीत संगीत और ध्वनि का कल्पना में इस्तेमाल किया गया था। 1965 में ही उन्हें विजय भट्ट की फिल्म हिमालय की गोद में काम करने का मौका मिला, जो टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। मनोज साहब की बुआ जी के लड़के पहले से ही बॉलीवुड में निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। लेखराज भाकरी एक दफा अपनी एक फिल्म तांगे वाले के प्रीमियर के दौरान दिल्ली आए थे। तब उन्होंने मनोज कुमार को देखते ही बोला कि तू तो हीरो लगता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया तो बना दो हीरो। इस पर लेखराज भाकरी ने मनोज साहब को मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद एक के बाद एक करके दिन, हफ्ते और महीने गुजरने लगे, मगर 6 महीने तक मनोज साहब की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने भाई से पूछ सके कि कब हीरो बना रहे हो। आखिरकार मनोज साहब ने एक दिन हिम्मत जुटाकर लेखराज भाकरी से पूछ ही लिया कि मैं हीरो कब बनूंगा। इस सवाल के कुछ दिनों बाद लेखराज ने मनोज कुमार को अपनी एक फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दिया, जिसके बारे में मनोज कुमार ने कभी सोचा नहीं था। मनोज साहब के बुआ के लड़के यानी लेखराज भाकरी ने महज 19 साल के मनोज कुमार को इस फिल्म में 90 साल के भिखारी का किरदार दिया था। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो हो। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: 89.6। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही ताजगी भरा गाना सुना आपने रेडियो डीएस 89.6 पे। और आप सोच रहे होंगे कि ओए होए होए, बहुत ठंड है यार गंगापुर सिटी में, क्या करे। सुनो, हम सिर्फ इंसान ही भैया ठंड के चपेट में नहीं आते। वो आईफिल टावर तो आपको पता ही होगा, जो इटली पेरिस में है ना, बिल्कुल हर साल ठंड के दौरान भैया वो 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मत करो, आपकी मर्जी है। वैसे एक और फैक्ट बताता हूँ कि ठंड के दौरान अगर आप मुझे 1 घंटे हेडफोन लगा के, मुझे नहीं किसी को भी, हेडफोन लगा के सुनते हो, गाने सुनते हो, तो बैक्टीरिया 700% यानी 700 गुना तक भैया बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप मुझे सुनना बंद कर दो। नहीं भैया, मुझे सुनते रहोगे तो 1 घंटे में आपके सारे टेंशन भी गायब हो जाएंगे। तभी 3 गाने सिर्फ आपके लिए,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: बहुत ही प्यारा अमेजिंग गाना सुना आपने रेडियो डीएस 89.6 पे। और अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि इंसान यानी कि मैं यानी कि आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होते हैं? अब अगर आपका जवाब है सोते वक्त, तो आप गलत हो, क्योंकि सोते वक्त हम सपने देख रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है चलते वक्त, तो भी आप गलत हो, क्योंकि हम चलते वक्त अपने स्टेप्स गिन रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है नहाते वक्त, तो आप सही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान शावर लेते वक्त या नहाते वक्त होता है। अब अगर आप बहुत दिनों से क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहे हो, तो इसका एक ही भैया रीजन है कि आपने नहाया नहीं। अब आप बोलोगे, नहीं यार गंगापुर सिटी में ठंड बहुत है, तो क्या करे? कुछ नहीं, गाने सुनो।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: नॉक नॉक हेलो हेलो अच्छा सॉरी सॉरी आप ध्यान से गाने सुन रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद आप ध्यान से मेरी दो लाइंस भी सुन ही लोगे। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और पेश करता हूँ आपके खिदमत में नजरों से जुदा हुआ ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ यू अलविदा हुआ भी तो क्या अलविदा हुआ नहीं हुआ कोई सेंस

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: कहावत जो है वो बदलनी पड़ेगी। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और अंगूर खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा टेस्टी लगता है, पर उसे अगर माइक्रोवेव कर दोगे तो वो फट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है अभी गाड़ी लेके घर पहुंच जाओगे और माइक्रोवेव में अंगूर डाल दोगे, क्योंकि अंगूर दूर से अंगूर खट्टे होते हैं और माइक्रोवेव में अंगूर फटते होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: ये साइंटिस्ट कुछ भी कर रहे हैं आजकल, ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और अमेरिका के फ्लोरिडा में साइंटिस्टों ने एक ऐसा रोबोट, एआई रोबोट बनाया जो हमारे साथ बॉक्सिंग कर सकता है। यार इस बॉक्सिंग वाले रोबोट का नाम चैट जीपीटी नहीं, चाटा जीपीटी होना चाहिए। और हाँ, इसे हराने के लिए भैया अपर कट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पावर कट की जरूरत है। पर फिलहाल आप गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: समझ रहे हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: अच्छा ठीक है पर फिलहाल जाने का समय हो गया। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इंडिया के बेंगलोर की एक लेडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा दांत है 38। अब ये लेडी के बारे में ना तो मैं कुछ बोल सकता ना आप कुछ बोल सकते, हम सिर्फ दांत दे सकते। फिलहाल गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।